0: गोली चांज जर साकर चीजर लुटिन जु
1: दि यी लंग दो स दन बा काना चीज लो तो तो
0: बेचे न तो
1: बेचे लो क्यूरिन छी
2: सिके न बचो कुन खामसा ता ने बेजो लोंग छेन छे ले कॉन कंक्रीट लोंग छेन छे बुजो लो तो छु छु सुरी श्याम ला पु रंग जो जो मेज का ना रे का ची हिम जो सोय चोंग रे ना वे बुजो लो तो ल ये जों ने बु मे ता लुई दावा दुम पे दा खी ता जाका छिप जो कॉन टु दो दु छे छरी लो जखिरंग ने
3: जे जे दिन को वे दिन रा जा बा जो के जो इन ता ये बा मेन जी न्या वा यांग वंग जो सिंग गी छम जे ती दिन ता मे पो छे ता चुंग वा छि गो सियो लु के गा चंग ने रंग दी वु थो दिन सो शा के छा
2: 최바중식 对木匠吧，工作内把钱对土土下规则到，等你别的东把个砌砖啊呢，别的砌把个砌砖啊罢了，碰到的可能去的是呢，小去到，这个提对工作啊不做就在原来东就对木匠吧，这工作旁的路给对手的，提起对土了带规则，等你真够做到。
3: 是是，今年一三岁起，我叫什么呢？对土米长更新，切更切，瞧看着，点这两把，门对对的身边才买的秋旋档，叶旋。热旋机没用我下过，雕像周边三个节小组能帮着套餐的没啥的西北的，下一节他不当拍照个来个也不习惯。前年周六个我才赢呢，前年顿答应我才明白的，你妈呢？前年节孙哥的拍个我才赢呢，这次干嘛就客气了？下顿人乾隆爷了坚定对责任就位，民进党除了修不得下，我下了个能新碰下你老的那两脚大走你都还去相对，下老的碰不长难人，如今通党三个的你也那么想下了。普鲁这边青年时期，采取一下这款个，等于那表达明白个青年一三岁前，我就是我们对土米人更。